उमा महेश्वर का नंदन वन प्रिय दर्शन मयंक आभूषण उमा महेश्वर का नंदन वन प्रिय दर्शन।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

गोविंद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यास योग चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को अति पुरातन तथा सनातन बतलाते हैं। वह हर युग में आवश्यकतानुसार स्वयं के प्रकट होते रहने की

श्री भगवान कर्म अकर्म तथा विकर्म की गहनता स्पष्ट करते हैं। वह यज्ञ की महिमा का विवेचन करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं।

श्री गोविंद ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पांडव, अपने हृदय में स्थित अज्ञानी संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर रण के लिए तैयार हो।

0: ओम लोपामुद्रा ये नमः ओम श्रीकावेर ये नमः ओम अनंतगुणगंभीरा ये नमः ओम अर्कपुष्करसेविता ये नमः ओम अमृतस्वार्थनिला ये नमः ओम अगस्त्यमुनिनायके नमः ओम आशापुष्करसेविता।
1: कावेरी के किनारे किनारे सुनिए अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम। अनुसंधान आलेख और प्रस्तुतिकरण H.V. रामचंद्र राव। ध्वनि संयोजन एवं प्रस्तुति सहाय A.R. गोपाल नायक। सुनिए रूपक।

0: காவேரி கே கிநாரே கிநாரே.
1: ஓம் சந்திரபுஷ்கர மத்யஸ்தா ஜெய் நமஹ. ஓம் சதுரானன புத்திரிகா ஜெய் நமஹ. ஓம் சோழதேச ஜனோத்தார கிரீஷ்மகால பிரவாகினியை நமஹ. ஓம் சுஞ்சுட்சேத சமானீதா. தட்சிண தேசமே காவேரி பிரசித்த நாமீ ஹை. காவேரி பிரம்மகிரி பஹாட்கே நீச்சே உற்பத்தி ஹோத்தி ஹை. காவேரி துலா மாஸ் மே ஊப்பர் உகத்தி ஹை. புல்புலே ஊப்பர் ஆதி ஹை. உஸ் சமய லாக்கோ யாத்ரிகன் யஹா ஆகர் ஸ்நான் கர்தே ஹை, பூஜா கர்தே ஹை, தீர்த்த பீக்கர் சலே ஜாதே ஹை.
2: ஹாம், மேனே பி ஸ்நான் கியா, தீர்த்த பான் கியா, பர் அப் மே யஹா ஸே ஜாவுங்கா தோ இஸ் நதி கே கினாரே கினாரே சாகர் சங்கம் தக் ஜாவுங்கா.
3: नमस्कार श्रीमान जी.
2: नमस्कार.
3: आपको इस क्षेत्र का परिचय करा दूं?
2: हाँ,
3: मैं यहाँ का अधिकृत गाइड हूँ.
2: हाँ, मेरे साथ कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेंगे.
3: हाँ,
2: आपका पारिश्रमिक मैं दे दूंगा.
3: क्यों नहीं, मुझ में तमिलनाडु के क्षेत्रों में यात्रा करने की इच्छा भी है.
2: अच्छा,
3: एक पन दो काश हो जाएगा.
2: आपने सुना अष्टोत्तर पूजन में एक अंश, चोड़ देश.
3: चोड़ देश को जल द्वारा उद्धार कर ग्रीष्म काल में भी प्रवाहित होने वाली नदी है. मंत्रकार ने कावेरी की जीवनदायिनी शक्ति को कुछ ही शब्दों में भर दिया है.
2: अच्छा,
3: चलिए आपको कावेरी की कहानी सुनाएंगे.
2: हाँ.
3: नमस्ते बहन जी.
4: नमस्ते.
3: आप इन्हें कावेरी की कहानी सुनाएंगी?
4: क्यों नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न कावेरी राजा कवेर की पालित पुत्री थी. उन्हें ऋषि प्रवर अगस्त्य को विवाह में देते समय राजा ने अनुशासन रखा,
5: आप मेरी पुत्री को छोड़कर कभी दूर न हो. आप इस अनुशासन को तोड़ेंगे तो कावेरी आपको छोड़ देगी.
2: तो अगस्त ने अनुशासन तोड़ा होगा?
4: हाँ, विवशता में. एक बार वे वेद शास्त्रों के शास्त्रार्थ में इतने मग्न हो गए कि कावेरी का विस्मरण सा हो गया. जब वे घर आए वह नहीं थी. उसने तलकावेरी के इस कुंड में देहांत कर लिया था.
2: अगस्त जी बड़े व्यथित हुए होंगे.
4: हाँ, वे व्यथित होकर जहां तहां भटकते रहे. फिर इस जलकुंड पर आकर उन्हें पता लगा कि कावेरी यहाँ पर जलमग्न है.
2: अच्छा,
4: उन्होंने कावेरी से बड़ा अनुनय किया.
2: जिसका देहांत हो जाए वो फिर लौटते कैसे?
4: यह ऋषि का प्रभाव था और कावेरी की शक्ति थी. उसका अर्धभाग लोपा मुद्रा के रूप में अगस्त्य जी को मिला. शेष अर्धभाग प्रतिवर्ष तुला संक्रमण के अवसर पर यानी अक्टूबर 17 तारीख को नदी के रूप में यहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु को जीवन धारा प्रदान करता है.
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद. यात्री जी आगे बढ़े.
2: कहाँ?
3: यहाँ से ब्रह्मगिरी तक कावेरी गुह्य वाहिनी है.
2: हाँ.
3: यानी छिपकर बहती है.
2: अच्छा अच्छा.
3: वहां से बह निकलती है. ब्रह्मगिरी में भ्रुगुंड महर्षि स्थापित ब्रह्म विष्णु और शिव के मंदिर हैं.
2: अच्छा,
3: फिर हम वहां से कृष्णराज सागर और वृंदावन चलेंगे.
2: अच्छा चलें.
3: यह है कृष्णराज सागर. यहां आपको दो व्यक्तियों से मिलाएंगे. मिलिए इनसे. इनका शुभ नाम है श्री कृष्ण. ये यहां के मुख्य अभियंता हैं.
2: नमस्कार.
6: इनदिगे लक्ष्मण तीर्थ मत्त हेमवती नदीगळु सेरुवा संगम.
7: लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती के संगम स्थान पर सर एम विश्वेश्वरैया जी की योजना के अनुसार 1931 में बांध बनाया गया. यह मैसूर शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है. इस बांध का जलानयन प्रदेश 10,619 किलोमीटर है. यहाँ से सबसे अधिक जल निकास का गात्र 2,90,000 क्यूसेक है. इस बांध का जल ग्रहण सामर्थ्य 48.335 टीएमसी होगा. सिंचाई के लिए बाई ओर विश्वेश्वरैया नहर है और दाई ओर देवराज अरस नहर है. कृषि का क्षेत्र आजकल 1,96,000 एकड़ तक विस्तृत हो गया है. इस नहर के जल से श्रीरंगपट्टन, पांडवपुर, मंड्या, नागमंगल, हेगड़े देवनकोटे, मैसूर और तिरुमकुडलु नरसीपुर तालुक के किसान धान, ऊख आदि की कृषि करते हैं.
2: कितना सुंदर स्थान है. यहाँ का उद्यान भी बहुत सुंदर है.
3: आप यहाँ के फौरों को और बिजली के वर्णमय कांति को देखकर चौंधिया जाएंगे.
2: अच्छा,
3: हर इतवार को और छुट्टी के दिनों में संगीत की लहरों के साथ फव्वारों का जल नृत्य करता है. चलिए, फव्वारों का संगीत नृत्य शुरू हो गया. इनसे मिलिए. ये हैं श्री रामू. बागवानी विभाग के एक अधिकारी हैं। इस उद्यान में इन्होंने 12 साल सेवा की है।
2: नमस्कार श्री रामू जी, आप वृंदावन के फूल पौधों के बारे में कुछ बताएंगे?
8: आ गार्डन के तकनते फाउंटेन्स कोट्रो।
7: इस उद्यान के योग्य फव्वारे बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, बत्तियां लगाई गई, प्रकाश व्यवस्था हुई। इन तीनों का संयोजन यहाँ स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगल में फलों का एक बगीचा भी है। लगता है कि यहाँ आने वालों को ऐसे फल खाने को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य था। कावेरी के तीर पर फलों के इस बगीचे को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है कि इसके पके फल पानी में गिरे, उसके बीच बहकर तीर प्रदेश के खेतों में पहुंचे और वहां फलों के और नारियल के पौधे उगे।
2: कृष्ण राज सागर और वृंदावन देखकर मुग्ध हो गया।
3: अब तो हम मैसूर वापस आ गए हैं। मैं आपकी बहन श्री डी देवराज से करा दूंगा, वे यहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं, यहाँ के मंदिरों के बारे में बताएंगे।
2: अच्छा,
9: रंगनाथ जी की जो मूर्ति इधर है वह कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंश होयसल के जमाने की है। तलकाड में भी कई मंदिर है, उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है।
2: आप कहाँ ले चलेंगे?
3: चलिए शिवन समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है।
2: वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन प्रस्तर खंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है।
3: यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी।
2: नमस्कार।
10: द फॉर्मर महाराज ऑफ मैसूर विद असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स।
5: मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक केंद्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया।
2: यहाँ कितने जनरेटर हैं और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है?
5: टोटल यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी।
3: इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलोर वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता।
10: वाटर इज आल्सो बीइंग फेड टू बेंगलोर थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलोर।
5: यहाँ से बेंगलोर को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।
10: तो फोर्थ स्टेज आल्सो।
3: अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे, यहाँ की हरियाली देखनी हुई।
2: सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोंधी सोंधी गंध, मेहनतकश मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटें। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है, तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम।
3: कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं, यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है।
2: वाह,
3: इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लू। ये हैं श्री चौड़प्पा जी, भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के
7: एक प्रगतिशील किसान।

0: कैसे भव्य मूर्ति है। ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है।
1: आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय के जिह्वा से तत्काल निकला था गंगलिर्द्यातको कावेरी रंगना नोड़दा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो।

0: हाल ही में यहाँ इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया।
1: इसी गोपुर को हमने मुकुम्बू से देखा था।
0: हाँ,
1: लगता है हम तिरुची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है।
0: हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय।
2: दिस इज वन ऑफ द फ्यू मेडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज।
3: यह मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं। 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं।
0: इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई। फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है।
1: कौन सा?
0: बंगारू कामाक्षी का।
1: अच्छा,
0: इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है।
1: वो क्या?
0: जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे, वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे।
1: कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री तीनों तंजावुर के थे?
0: दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहाँ से दूर नहीं थे।
1: अच्छा,
0: कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवायूर।

वहाँ उनकी समाधि है। उनकी आराधना हर साल तिरुवैयारो में होती है। उस महानुभाव ने अत्यंत विनय के साथ संसार के कितने ही महान भावों की वंदना की थी। आज भी उस पर्व पर

0: कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजाराम।
1: यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर, साम, ऋग, वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता।
2: यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे।
0: यह है श्री राधा कृष्ण, यहाँ के ITI के संचालक। इतिहास के प्राध्यापक थे पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं।
3: पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयम् पुण्यलाभः प्रवर्तते। जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयम् पुण्यलाभः किंतु सद्य पुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्।
0: जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर, तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं,
4: எங்க கிராமம் கல்யாணிலேருந்து கிழக்க திருவாரூர்ல 10 மைல் இருக்கு.
5: यह गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा, तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम 1 हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं और इसीलिए हमारा गाँव विष्णुपेट की जगह 9 टन गाँव कहलाता है।
0: कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे।
6: द कावेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज रनिंग इन अवर तमिलनाडु।
7: कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुचि और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं, सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं।
2: अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको?
0: कावेरी जहां सागर में मिल जाती है, वहां जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यन से मिल लेंगे।
8: इन द ईयर 1934 द मेट्रो डैम वाज कंस्ट्रक्टेड एंड आल्सो जीए कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड।
9: 1934 में मेट्रो बंद बनाया गया, ग्रैंड एनेकट नहर भी बनी। इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया।
2: तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा
0: पूम फुहार पर, जहां कावेरी सागर में समा जाएगी।
2: हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहां केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था। उसका विशाल पात्र देखा मोकुम्भ में, श्रीरंग में। अब यहां कावेरी एक पतली धारा बने।
0: श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यो वर्णन करते हैं।
9: बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती। किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते।
7: कावेरी के किनारे किनारे अखिल भारतीय रूपक माला में कावेरी पर आपने ये रूपक सुना। इसका आलेख तैयार कर प्रस्तुत किया एच वी रामचंद्र राव ने। प्रस्तुति सहायक थे ए आर गोपाल नायक। इसमें अनिल कुमार, अहमद जलीस, मिलन सर अहमद, शिवशंकर कणाजनवर, बी आर रत्नमाला और चंद्रिका ने भाग लिया। आकाशवाणी के तिरुचनापल्ली और मैसूर केंद्र की सहकारिता में निर्मित ये रूपक हमारे बेंगलुरु केंद्र की

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि माता पार्वती की आज्ञा पाकर बालक गणेश पार्वती भवन के द्वार पर जा डटे। उन्होंने शिव द्वारा भेजे गए नंदीश्वर को भीतर नहीं जाने दिया। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को बालक गणेश को बलपूर्वक द्वार से हटाने का आदेश दिया। भयानक युद्ध हुआ जिसमें शिवगण ही नहीं समस्त देवता भी गणेश जी से परास्त हो गए। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। इस पर क्रोधित हो देवी पार्वती ने सहस्रों शक्तियां देवताओं पर छोड़ दी। वे तभी शांत हुई जब शिव शंकर ने गज मस्तक जोड़ गणेश जी को पुनः जीवित किया। गणेश जी को सर्वाध्यक्ष और अग्र पूज्य घोषित कर दिया गया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महामना शौनक जी, ये मात्र गणेश जी का ही नहीं न्याय और दंड का भी उद्भव था।
2: वो कैसे सूद जी?
1: शौनक जी, श्री गणेश को अपना द्वारपाल नियुक्त करते समय देवी पार्वती ने उन्हें एक दिव्य छड़ी प्रदान की थी। वो और कुछ नहीं, स्वयं दंड ही था।
2: छड़ी और दंड? क्षमा करें सूत जी महाराज, बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है।
1: वो दिव्य छड़ी गणेश जी को देते समय देवी ने कहा था कि पुत्र, यही तुम्हारा अस्त्र होगा। वही छड़ी मार मार कर श्री गणेश ने शिवगणों यहां तक कि देवताओं तक को परास्त कर दिया, अर्थात उन्हें दंड दिया। शौनक जी, इस प्रक्रिया को न्याय कहना आरंभ हो गया। और न्याय वही कर सकता है शौनक जी जो सर्वश्रेष्ठ हो। श्री गणेश तो सर्वाध्यक्ष घोषित किए गए थे।
2: वाह महाभाग सूत जी, ये तो आपने न्याय और दंड की बहुत सुंदर व्याख्या की है। परंतु सूत जी, आपने पिछली भेंट में कहा था कि आप दूसरे शिव पुत्र की उत्पत्ति का वृतांत भी बताएंगे। देवी गंगा को शिव पुत्र उत्पत्ति का बीज देने के पश्चात क्या हुआ?
1: शौनक जी, शिव आज्ञा मानते हुए गंगा ने वो बीज ले तो लिया था, परंतु वे बहुत ही विचलित थी।
3: हे महाप्रभु, आपने मुझे ये कैसा विकट और असाध्य कार्य सौंप दिया है। इस बीज के ताप से संपूर्ण गंगोत्री प्रदेश झुलस उठा है। वृक्ष पत्तों से विहीन हो चले हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझा गई हैं, पशु पक्षी शीतलता पाने के लिए निरंतर मेरे जल का पान कर रहे हैं। ताप से मेरा जल भी वाष्प बनकर उड़ा जा रहा है। चारों ओर अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे सब मुक्तिदायिनी कहते हैं, अपने इन सेवक जीवों को इस संताप से कैसे मुक्ति दिलाऊं? क्या करूं, कैसी असहाय हो उठी हूं मैं। मेरा मुक्तिदायिनी स्वरूप लुप्त हुआ जा रहा है। प्रभु, प्रभु मुझे मेरे इस अंतर द्वंद से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए।
4: नारायण नारायण, हे निर्मल शीतल गंगे, ये कैसा विलाप? सर्वदा शांत रहने वाली गंगा में आज ये हलचल कैसी?
3: आप तो अंतर्यामी हैं मुनि नारद, मेरे मन में चल रहे अंतर्द्वंद को समझ सकते हैं। महाप्रभु ने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, न उसे छोड़ते बन रहा है न पूरा करते। शिव आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती। अपने पर आश्रित जीवों को यूं त्रस्त होते भी नहीं देख सकती।
4: नारायण नारायण, ये तो वास्तव में बड़ी दुविधाजनक स्थिति है।
3: आप ही कुछ निवारण बताएं ब्रह्मर्षि।
4: पाप नाशिनी गंगा को स्वयं पाप करने से बचाना ही होगा। यदि बीज त्यागना पाप होगा तो संतप्त प्राणियों की सहायता ना करना भी तो पाप ही होगा ना। आप ऐसा करें देवी गंगे, शिवपुत्र उत्पत्ति के बीज को अपने जल में प्रवाहित कर दीजिए।
3: ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? प्रवाह करना त्यागने के समान ही तो है।
4: नारायण नारायण, आप उसका त्याग कहां कर रही हैं देवी? इस शिव धरोहर को आप अपने ही तो इस जल को समर्पित कर रही हैं। वो रहेगा तो इसी गंगा में ना।
3: परंतु शिव पुत्र उत्पत्ति
4: होगी, वो भी होगी। प्रभु की लीलाएं न्यारी होती हैं देवी। नारायण नारायण, उन्हीं का स्मरण करते हुए इस बीज को प्रवाह होने दीजिए देवी। इसे इसकी नियति को समर्पित करते हैं।
3: जैसी आपकी आज्ञा नारद मुनि। ये लीजिए, मैंने बीज जल में छोड़ दिया।
4: नारायण नारायण, देवी बीज की यात्रा आरंभ हो गई है। संपूर्ण जगत का स्वच्छंद विचरण करने वाला ये नारद आज इस बीज यात्रा में सम्मिलित होकर इसकी नियति तक पहुंचता है। मैं भी चल रहा हूं आपके पीछे पीछे शिवपुत्र।
3: इस तेजस्वी बीज के कुछ दूर जाते ही मेरा ये जल शीतल होने लगा, वातावरण की उष्णता समाप्त होने लगी, चारों ओर शीघ्र ही हरियाली लौट आएगी। देखो तो बीज कहां तक पहुंचा।
4: नारायण नारायण, अरे ये बीज तो सरकंडों के वन में जा उलझा है। गंगा का प्रवाह भी इसे वहां से मुक्त नहीं करवा पा रहा है। नारायण नारायण, देवी बीज अपने ऊपर के आवरण से मुक्त होना चाहता है। देवी देवी देखिए तो, इसमें से कैसा दिव्य प्रकाश फूट पड़ा है। देवी गंगे आई है, देखिए तो, आपका प्रयास सार्थक होने जा रहा है। शिव पुत्र का आगमन हुआ चाहता है देवी।
3: मुनि नारद, इस बीच से किसी दिव्य शिशु की उत्पत्ति हुई है। इसकी तो छह कांति में मुख है। शिवपुत्र षडानन, सृष्टि में आपका स्वागत है।
5: स्वागत है, स्वागत है।
4: अरे ज्ञान योगिनी कृतिकाओ, आप सब यहाँ कैसे?
6: महर्षि आप तो जानते ही हैं, हम छह कृतिकाएं मातृत्व सुख से वंचित हैं। मातृत्व सुख का अभाव किसी भी स्त्री के लिए अति कष्टदायक होता है। उसके बिना वह अपूर्ण रहती है, समाज में

0: विश्वास है?
1: अवश्य है। कृतिकाओं, आप तो अति ज्ञानी हैं। किसी की धरोहर बिना उसकी अनुमति के किसी और को नहीं सौंपी जा सकती।
2: परंतु उससे पूछने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है।
1: मैं समझी नहीं मुनिवर।
2: गंगे, माता पार्वती का हृदय बहुत विशाल है। हमें विश्वास है कि कृतिकाओं का दुख देखकर उनका स्त्री मन भी द्रवित हो उठेगा। वो अवश्य इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी।
1: चलिए चलिए शिव पुत्र षडानंद, आपके पिता और माता आपका ये दिव्य रूप देखने के लिए ललायित हो रहे होंगे।
2: नारायण नारायण।
1: लाओ गंगे, शिव पुत्र को हमें दो। अपने इस पुत्र की कब से प्रतीक्षा थी हमें।
3: तुम धन्य हो गंगे, जन कल्याण के इस कार्य में तुम्हारा ये योगदान सराहनीय ही नहीं, पूजनीय भी है।
1: गंगे, शिव पुत्र तुम्हारे निर्मल और पवित्र जल में उत्पन्न हुए हैं, अतः आज से तुम भी इनकी माता हुई।
2: नारायण नारायण। और आज से आप माता गंगा भी कहलाएंगी।
4: माते पार्वती, ये अति सुंदर शिशु कौन है? हमारे क्या लगते हैं?
1: पुत्र गणेश, ये आपके अनुज अर्थात छोटे भ्राता हैं।
4: हमारे अनुज? क्या हम इनसे खेल सकते हैं माते?
1: अभी नहीं पुत्र, इन्हें थोड़ा बड़ा होने दीजिए।
4: ये कब बड़े होंगे?
2: शीघ्र ही पार्वती नंदन गणेश, शीघ्र ही।
1: देवाधिदेव।
3: कहिए देवी गंगा।
1: ये कृतिकाएं आपसे तथा देवी पार्वती से एक अनुरोध करने आई हैं।
3: कहिए कहिए कृतिकाओं, आज इस मंगल अवसर पर आप जो वर मांगेंगी हम अवश्य देंगे।
5: महादेव, महादेवी, हमें वर नहीं चाहिए, हमें कुछ वर्षों के लिए षडानंद दे दीजिए।
1: क्या ये आप क्या मांग रही हैं कृतिकाओं?
5: महादेवी, हम छह मातृत्व से वंचित स्त्रियां हैं। एक स्त्री होने के कारण आप हमारी दुर्दशा समझ सकती हैं, समाज में होते हमारे निरादर को जान सकती हैं। हमें भी मां बनने का सुख प्रदान करें, मातृत्व की हमारी तृष्णा बुझाएं। देवी, हमें कृतार्थ करें।
1: नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। कुमार हमारे पुत्र हैं, हमने इनकी बहुत प्रतीक्षा की है। हम एक क्षण भी इन्हें अपने से विलग नहीं होने देंगे। हम भी माता हैं कृतिकाओं, आप हमें मातृत्व सुख से कैसे वंचित कर सकती हैं?
2: नारायण नारायण, आप तो जगदम्बे जग माता हैं देवी पार्वती। आपका परिवार तो इतना विशाल है कि अगर आपके परिवार के एक सदस्य से छह शिशुहीन नारियों को मां बनने का सुख मिलता है तो ये तो आपके इस पुत्र के लिए सौभाग्य की ही बात होगी ना।
3: पार्वती, हमारी और आपकी तरह प्रिय गणेश और कुमार भी सबके हैं। दुखियों को सुखी करना हमारा ही नहीं, इनका भी परम कर्तव्य है। ये देव पुत्र हैं, देवताओं की ही तरह इन पर पहले इनकी प्रजा का अधिकार है।
1: परंतु कुमार अभी बहुत छोटे हैं, इनका लालन पालन ये कृतिकाएं कैसे कर पाएंगी?
2: नारायण नारायण, देवी पार्वती, ये कृतिकाएं जन्म से ही हर कला में पारंगत हैं। कुमार का उत्तम लालन पालन होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है।
1: मने नारद, आपका कहना उचित है। देवाधिदेव, जैसी आपकी इच्छा। कृतिकाओं,
6: आज्ञा माते पार्वती।
1: आप कुमार

0: को ले जाइए, परंतु स्मरण रहे, हम जब भी इन्हें बुलाएंगे आप इन्हें भेज देंगी।
1: हम प्रण लेते हैं देवी, ऐसा ही होगा।
2: हे महाभाग सूत जी, शिव पुत्र कार्तिकेय के जन्म का उद्देश्य तो तारकासुर वध था, उसका क्या हुआ?
3: उठते बैठते तारकासुर एक दुस्वप्न देखने लगा। एक अति बलशाली बालक एक दिव्य रथ पर सवार है और उसके रथ में सभी दैवीय अस्त्र शस्त्र हैं। उस रथ के अश्व तीव्र गति से तारकासुर की ओर दौड़े आ रहे हैं। रथ उसके पास आकर रुक जाता है और वो सुंदर बालक धीरे धीरे यमराज में परिवर्तित होने लगता है। बार बार एक ही स्वप्न देखने के पश्चात तारकासुर इस स्वप्न का अर्थ पूछने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया।
4: ब्रह्मा से तुमने जो वरदान मांगे थे उनके पूरा होने का समय आ गया है तारकासुर।
5: परंतु दैत्य गुरु, वे वरदान तो कभी के पूर्ण हो चुके हैं। पूरी सृष्टि में हमसा यशस्वी कोई नहीं। त्रिलोकी पर हमारा राज है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमें मार नहीं सकते। फिर आप किस वरदान के पूर्ण होने की बात कर रहे हैं दैत्य गुरु?
4: दैत्यराज, तुमने ब्रह्मा से यह भी मांगा था कि तुम्हारी मृत्यु मात्र शिवपुत्र के हाथों हो। शिवपुत्र इस धरती पर आ चुका है।
5: शिवपुत्र धरती पर आ चुका है। दैत्य गुरु, गणेश शिवपुत्र नहीं है, वो पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न हुआ है। गणेश शिव का औरस पुत्र नहीं है,
4: परंतु कार्तिकेय है शिव का औरस पुत्र। उसकी उत्पत्ति गंगा में हो चुकी है।
5: ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हम तो समझते थे कि शिव बीज को ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं है, समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाएगा।
4: परंतु ऐसा नहीं हुआ है, गंगा ने उसे जीवन दे दिया है।
1: तो ये समाचार आपने हमें क्यों नहीं बताया शुक्राचार्य?
4: शुभ समाचार होता तो अवश्य बताता दैत्य माता, अवश्य बताता। होने को तो अब होना ही है। मैं अभी से तारकासुर को भयभीत नहीं करना चाहता था।
1: तो अभी आप क्या कर रहे हैं शुक्राचार्य? दैत्य गुरु होकर असुर राज के मन में एक छोटे से शिशु के प्रति भय उत्पन्न कर रहे हैं। आपको तो अपने इस शिष्य का भला सोचना चाहिए।
4: मैं दैत्य गुरु अवश्य हूँ दैत्य माता, परंतु विधाता नहीं हूँ। और विधाता से स्वयं असुर राज तारकासुर ने वरदान मांगे थे, मैंने नहीं। ब्रह्मा ने इन्हें अपने शब्द जाल में उलझाकर इनसे मृत्यु की कामना करवा ली। मैं होता तो अपनी बात पर अडिग रहता कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो पाऊं। ब्रह्मा को विवश होकर ये वरदान देना ही होता।
1: वो क्यों? उन पर किसका बंधन है?
4: भक्त का दैत्य माता, भक्त का। भक्त के आगे भगवान भी विवश होते हैं, परंतु ये मूर्ख तारकासुर ब्रह्मा का छल ना समझ पाया, अपने लिए मृत्यु मांग ही ली।
5: तो अब हम क्या करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य?
4: अब तुम प्रतीक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते दैत्यराज तारकासुर। प्रतीक्षा करो, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। हम चलते हैं
5: दैत्य गुरु। ये तो शुक्राचार्य भी हमारा साथ छोड़ गए।
1: तुम दैत्यराज हो तारकासुर, तुम्हें शुक्राचार्य की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भय से

0: दिलों की कांपती है।
1: हाँ।
0: और तुम एक शिशु के जन्म के समाचार से ही कांपने लगे।
1: हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दैत्य माता, कुछ नहीं आ रहा। हम अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं। हम कुछ समय एकांत में रहना चाहते हैं।
0: अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ करती हूँ। सेनापति।
2: आज्ञा दैत्य माता।
0: तुम्हारे महाराज तारकासुर की आज्ञा है, सृष्टि में एक बार फिर उत्पात और विनाश मचा दो।
2: जो आज्ञा दैत्य माता।
3: तो शौनक जी, ये था तारकासुर वध का सूत्रपात।
4: वध का सूत्रपात? परंतु तारकासुर सेना ने तो फिर पृथ्वी पर प्रलय मचा दी थी।
3: महाज्ञानी शौनक जी, तारकासुर के अंत का सूत्रपात तो उसी दिन हो गया था जब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगे थे।
4: महाभाग सूत जी, इस वरदान से तारकासुर का अहित कब और कैसे हुआ? क्योंकि उसका अहित कर सकने वाले कुमार कार्तिकेय तो कृतिकाओं के मध्य पल बढ़ रहे थे।
3: ज्ञान मूर्ति शौनक जी, बीतते समय के साथ देवताओं की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी, और उधर दैत्य माता दिति के नेतृत्व में तारकासुर सेना का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। परमपिता ब्रह्मा नारद समेत मंत्रणा के लिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु के पास पहुंचे।
5: विधात, आपका विचार अति उत्तम है। तारकासुर वध में अब विलंब करना उचित नहीं होगा।
6: नारायण नारायण, परंतु विष्णु देवा, अब किस बात की चिंता? कार्तिक के जन्म से भयभीत तारकासुर ने अपने आप को गृह बंदी बना रखा है। आठों प्रहर द्वार रक्षक दैत्य माता दिति के अतिरिक्त किसी को भी भीतर नहीं जाने देते।
7: पुत्र नारद, तुम दिति की प्रकृति को भली भांति जानते हो। वो शांत नहीं बैठने वाली। वो शीघ्र ही तारकासुर को भी कुमार कार्तिकेय से युद्ध के लिए प्रेरित करेगी।
6: नारायण नारायण, परम पिता, इससे तो देवताओं का अभीष्ट ही पूरा होगा। कुमार कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होना तो निश्चित ही है।
5: नारद, इस वध में जितना विलंब होगा उतना ही अधिक संघार होता रहेगा।
6: वो कैसे भगवान विष्णु?
5: दिति अपने उग्र वचनों से तारकासुर का साहस बढ़ाती रहेगी। तारकासुर का साहस जितना बढ़ेगा वो उतना ही अधिक विध्वंस करेगा, और इस विध्वंस से हमारी ही प्रजा प्रभावित होगी।
7: अतः नारद, तारकासुर का शीघ्र ही विनाश होना आवश्यक हो गया है।
6: नारायण नारायण, परम पिता, मुझे तो मात्र इतना बताएं, मुझे करना क्या है?
7: नारद, तुम अपनी इस बुद्धि उपयोग के लिए ही तो जग प्रसिद्ध हो।
6: नारायण नारायण।
4: प्रणाम महादेव।
8: प्रणाम ब्रह्मा पुत्र नारद। बहुत समय बाद आपकी हमारे ऊपर अनुकंपा हुई।
6: नारायण नारायण, क्यों लज्जित कर रहे हैं महाप्रभु? नारद का मन तो सदा आपके दर्शनों के लिए विचलित रहता है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में क्या घट रहा है यह जानने की उत्सुकता मुझे जग विचरण के लिए बाध्य कर देती है।
8: जगत में क्या घट रहा है मुनीश्वर नारद?
6: नारायण नारायण, सर्वज्ञ ज्ञाता महाप्रभु मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्षमा करें देवाधिदेव, कुमार गणेश कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे।
9: प्रणाम महामुनि, हम देवी जया और विजया के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। आपके आने का समाचार पाते ही हम आपके दर्शन को आ गए।
6: हमारा आशीष सदा आपके साथ है गणपति, परंतु दंड पाणी अनुज भ्राता के होते हुए भी आप माता पार्वती की सखियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे?
9: क्या करें मुनिवर, हमारी भी हार्दिक अभिलाषा है कि हम अपने अनुज कार्तिकेय के साथ खेलें, परंतु हम विवश हैं। आप तो जानते ही हैं, हमारे अनुज का लालन पालन कृतिकाएं कर रही हैं।
8: ब्रह्म ऋषि नारद
5: जी महादेव,
8: हम आपके आने का अभिप्राय समझते हैं। इसके लिए बालक गणेश की भावनाओं को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बताएं, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु क्या चाहते हैं?
6: नारायण नारायण, ये कैसा प्रश्न स्वामी, आप तो सबके मन का अभीष्ट जान लेते हैं।
8: ठीक है मुनि नारद, हम कुमार कार्तिकेय को तारकासुर वध के उद्देश्य से यहाँ बुला लेते हैं। नंदीश्वर।
10: आज्ञा महाप्रभो।
8: आप जाइए और कुमार कार्तिकेय की धर्म माताओं से कहिए कि हमारे आग्रह पर वे कुमार को आपके साथ यहाँ आने दें।
10: परंतु भगवान,
8: कृतिकाओं ने महादेवी को वचन दिया था कि हम जब चाहेंगे वे कुमार को हमें लौटा देंगी। वे वचनबद्ध है नंदीश्वर। मुनि नारद, आप भी नंदीश्वर और गणों के साथ जाइए और पुत्र कार्तिकेय को पूरे सम्मान के साथ ले आइए।
6: जी देवाधिदेव।
10: जो आज्ञा।
6: नारायण नारायण।
4: और महाज्ञानी शौनक जी महादेव का आदेश पाकर मुनि नारद और नंदीश्वर ने कृतिका धाम की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ सहस्रों अन्य शिवगण नाचते गाते चल रहे थे।
11: सहस्रों अन्य शिवगण, वो क्यों महाभाग सूत जी? महादेव ने तो मात्र नारद जी और नंदीश्वर को ही आदेश दिया था।
4: शौनक जी, अपने स्वामी के प्रिय पुत्र को देखने की लालसा किसे नहीं थी, और फिर पुत्र भी किसका, स्वयं देवाधिदेव का, जो सहस्रों वर्ष के अंथक प्रयास का फल था और दैत्य इतिहास में असुरों के लिए एक काला पृष्ठ जोड़ने जा रहा था।
11: ये तो आप सत्य कह रहे हैं सूत जी, और ऐसे में शिव गणों का उत्साहित होकर अपने कुमार का स्वागत करने जाना स्वाभाविक ही था। फिर क्या हुआ महाभाग, कथा का नया पृष्ठ जोड़िए ना।
4: परम ज्ञानी, अपनी इस शिव कथा में अभी तो अनेक पृष्ठ जोड़ने शेष हैं। हम भी कथा का नया पृष्ठ जोड़ेंगे, परंतु कुछ अंतराल के बाद।
11: जैसी आपकी इच्छा सूत जी महाराज।
12: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड से लिया गया था।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

पास है। भले घर के तो बेटे मैं तो करता हूँ अरदास, यही दाग लगा के बेटी मन

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचा कर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ,

नारी बिलो कहीं हरसिहिं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई जिहिसिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण राजत राज

0: समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है,
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को?
4: जहां जहां जाई कुंवर बर दो तहां तहां चकित चितव सबको।
5: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंज हूं भव धनुष विशाला, मेल ही सी राम उर्माला।
4: बिना धनुष तोड़े ही क्या बात कही तुमने? तोरे हूँ धनुष ब्याहू अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा।
6: अरे एक बार कालू किन होऊ, सियहित समर जितब हम सोऊ।
5: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
4: सुंदर सुखद सकल गुण राशी, ए दो बंधु संभ उर्वासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
2: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
2: महाराज हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
7: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण सुनिए, पर्ण विदेह कर कहे हैं हम, पूजा उठाए विशाल।
8: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो इतोरा, तिर भवन जय समेत बैदे ही, बिन ही विचार बरई हटते।
2: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
5: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
2: वे समझदार हैं और वो देखो वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना, तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को। अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
8: बेकार जान पड़ता है और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआ।
2: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं, वो देखो। पर सब
8: दगई न संभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
2: सब नृप्र भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
8: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
2: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह लेकर।
8: जनक जी कुछ कह रहे हैं।
2: शांत शांत शांत।
1: अतिथियों मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छोड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते न आसाई।
2: अब क्या होगा?
8: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
2: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भाई भौं हैं, रद पट भरकत नयन रिसों हैं।

0: हे दात, रघुवंश सिंह महु जहाँ को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमि टारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
1: सुना प्रभु, देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
2: ना सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
1: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं,
3: जा रहे हैं क्या?
1: बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
4: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा।
5: सखी देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्ष विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराज ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु रामु गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करे तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए, देखो ना। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे उस सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
6: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो दो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुले सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी। होई हरु रघुपति निहारी।
5: सखी सखी तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो। राजकुमारी चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन्म विधु मंडल डोल। बोलते क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलिनी मुख पंकज रोके, लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
6: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले।

0: सुनते हो। आंखें खोलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
1: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
0: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखेउ रघु बंस मनी, ताक्यु हर को दंड, पुल के गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड।
2: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग वारा, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
3: ये क्या हुआ, कैसी दामिनी दमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
4: वही तो धनुष है,
3: उठा भी लिया।
4: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर किसे छुओगी राजकुमारी? समझी नहीं सकी, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद से मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: ये भी कोई बात है?
1: खड़ महीनों का बात।
0: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे।
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?

0: अरे आप लोग बैठे।
1: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
0: है। ये कौन आ रहा है? बिशप कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृक्षाला,
2: कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
0: रघुपति परशुराम,
3: परशुराम
4: नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
5: दंडवत प्रणाम,
6: प्रणाम, प्रणाम,
7: दंडवत प्रणाम,
8: दंडवत प्रणाम,
9: दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।
10: विदेहराज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीर।
11: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
10: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
11: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
10: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ चनक धनुष कै तोरा, वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटू मही जहां लही तब राजू।
12: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
10: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
6: मुनिवर,
13: बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू नासी फिरस कीनी गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु।
10: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार।
13: सुनहु देव, सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु ना दोसु। मुनि, बिन काज करिए कतरो।
10: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार, देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा। कह देता हूं, मात पिता ही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोर।
13: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुमार बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरे जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनेऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते, इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर, कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर।
10: कौशिक, सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई, तुम हटकौ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
13: हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपन ही करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं ततो सु तब पुनी कुछ कहू, जनेरे से रोके दुसह दुख सहू।

0: व्रते तुम धीर अचोभा गारी देत ना पावहु शोभा सूर समर करनी कर कही न जना वहिया विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहि प्रताप। लेकिन आप मुनिवर आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा।
1: सुनिए विश्वामित्र अब जन देह दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक बध जोगु बाल फिनो की बहुत मैं बाचा अभी यह मरण हार भासा चा।
2: क्षमा करे बंधुवर इससे अपराध हुआ बाल दोष गुण गनहिन साधु।
1: घर कुठार में अकरुण कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देता जा रहा है फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे नत यही काट कुठार कठोरे गुरही उरिन हो त्यू श्रम थोरे।
0: हे भगवपति परशुराम परसु दिखा बहु मोही मित्र बेचारी पचौ नृप द्रोही मिले न कबहु सुभट रन गाड़े विज देवता घर ही के बाड़े।
1: अनुचित है
3: अनुचित है
4: नाथ करहु बालक परछोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना कौ की बराबरी करत आयाना जौ लड़िका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरी करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
1: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम तोर भ्राता बड़ पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीच मीच सम देख न मोही।
0: सुनिए मुनिवर क्रोध पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिए अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठ हो ही पाए पिराने जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बर गुनी बोलाए।
1: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे।
4: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिए नहीं काना बररे बालकु एक सुभाव इन्हीं न संत विदुष ही काऊ तेही नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधु बंधव गुसाई मौ पर करिय दास की नाई कहिय बेग जही बिधिर सिचाई मुनि नायक सोई करो उपाय।
1: राम मेरा रोज कैसी जा सकता है जब अजहू अनुज तब चितब अनय से मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए नहीं एही के कंठ कुठारू न दीना तो मैं काह कोप कर कीना ये भी कोई बात है गर्व सिर्वही अब निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछति देखाऊं जियत बैरी भूप किशोर।
4: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है जहिर से जाई करिय सोई स्वामी मोही जानिय आपन अनुगामी मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु बेश बिलोकी कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर लक्ष्मण तो लड़का ही है देख कुठार बान धनुधारी भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी नामु जान पे तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाए उतरोते ही दीन्हा। यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनचानत केरी चहिए विप्र उर कृपा घनेरी नाथ, हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं? कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक, और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए, हमारा तो एक ही गुण है धनुष, और आपके 9 गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि, सभी परम पुनीत। विप्रवर, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
1: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है, मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन, तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं। चाप स्रवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एही परसु काट बल दीने, समर जग जप कोटि न कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है, तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम, ये धनुष क्यों तोड़ डाला? तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहू जीत जब उठा रहा।
4: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना, जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहो सुभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
1: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखर गए हैं, पर फिर भी राम रमापति करधन लेहू, खैचहू मिटे मोर संदेहू।
3: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
5: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
6: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
7: अरे, ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं।
6: सुनो सुनो।

0: रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग।

अंत सब काबू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी।

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। ये माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तैं नहीं माखन खायो,

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड दम पर मधुर एके, गिटार पर हिमांशु बिजुधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय, आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

0: cagada, cagada, Manuayo.
1: Antarachir, cagada.

மனுவாயோ அந்த கீருக்ககன மனுவாயோ அப்ப நீ

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराध्य।

0: 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।